0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल तिथर पिथर हो गया।
1: अयो मिम्मेल का नेदो सरदा गारु बाट प्राक्टिस चेसुकुंटुन्नानु अंते अंते अंते रंडी।

इतिहास की शुरुआत आग से हुई। आग शक्ति है, आग जिंदगी है। तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल